श्री देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म समृद्ध स्वामी श्री माधवानंद जी भगवान की जय।

जय। श्री देव पुरुष महादेव की जय। धरम सम्राट स्वामी मदवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्याला

मेरा लिख दो मारे रूम रूम मेरा गोडो पे कन्हैया लिख ओ पैरों पे बल दे वे पे कन्हैया लिख दो पैरों पे बल लिख दो मारे रूम रूम मेरा लिख दो मारे रूम मेरा बोलो सतगुरु देव की जय। अच्छा बोलिया हाँ बढ़िया और बोलो तीन तीन हाँ आना गर

ना गौरी साथ ले के नंदी साथ ले के आना आना गरुसा मेरे या आना आना गरुसा मेरे या

सीता साथ के आना आना गरुसा मेरे आना आप आना गरुसा मेरे यान तुम्हें भरम रूप में आना तुम्हें भरम रूप में आना विष्णु साथ लेके लक्ष्मी साथ एके आना आना गरुसा मेरे यान आना आना प्रभु जी मेरे यान तुम्हें कृष्ण रूप में आना तुम्हें

0: गरुसा मेरे आना, आप आना गरुसा मेरी संगतों में आ जाना। हरिओम
1: हरिओम।

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरट है। Mm-hmm.

0: या भी
1: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om.
0: Tizenegyszer Om lesz.
1: There are different centers.
0: Vannak különböző központok.

0: मंगलम। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्वागुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की, अलकपुरी जी महा

गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम् ॐ शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की, पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेस्ड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स भक्तास डियर वंस राउंड द वर्ल्ड दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत जाडन राजस्थान पाली फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज। द स्कूल्स द कॉलेज एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया तक्षशिला। मैनी मैनी थिंग्स सो ओके लेट्स गो फर्दर। इन अवर गुरुकुल ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल वेयर द Students are studying from the nursery school, primary school, middle school, high school and college. In this area of Rajasthan, we have one project and many of you know, it's called Gyan Putra. हम अवर गुरुकुल एडॉप्ट्स द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन एज ए मानस पुत्र। एक तो मानस पुत्र होता है जिसको हम हमारी पुत्र के समान आदर करते हैं प्यार करते हैं समझते हैं और वो ही चाहे आप मानस पुत्र कहो या ज्ञान पुत्र क्योंकि फादर का बाप का माँ बाप का फर्ज होता है कि संतान को शिक्षा दें बिकॉज द पेरेंट्स आर दे हु गिव्स द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन The time the school begins from 1st of July. So now our students are coming. But dear ones, you can see many of our Gyan Putra, our students in our hostel still coming and you see them
in the Pitambar dress, Pitambar like gold, and Bhagavan Krishna used to have Pitambar. And you see, Pitambar is a color of the flame of the fire. So, the Vidyarthi, they are studying, they should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress, and this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural traditions, ethics, morals, and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, हमें तो ज्ञानार्जन करना है, पैसे की बात नहीं करनी है, हम पढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि वो पैसे जो हैं, जो तुम सोचते हो, वो तुम्हारी विद्या के अंदर हैं, और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है ये, इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा बड़ा होकर के मेरे माता पिता मेरी समाज और मेरा गांव मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो ले एक महीना रहा 15 लाख अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं 15 लाख रुपए उठा सकते हैं हम अरे बहुत तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है 15 करोड़ इतो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है कितना ही पानी निकालो वो तो पानी
अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर द लैंग्वेज the first language what we call is sanskrit sanskrit is the mother of all the languages around the world maybe 2-3 not everywhere there is the words of the sanskrit language in many countries and also the culture goes from the bharat All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indus Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia is also where the South Indians, which we call the Aborigines. So, Aborigines ke andar वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है साउथ इंडिया का है तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ स्वयंभू शिव आगे वापस वहीं के नहीं इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं सब कुछ है अपने देश के अंदर में और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है चंदन है मेरे देश की मिट्टी तपो भूमि हर ग्राम है है? हर बाला है देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है फिर क्या काम है वहां तो आराम है वहां आराम नहीं है सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल अवर ज्ञानपुत्र इज हियर दे आर कमिंग And we are welcoming them, and you are most welcome to help for the education. Thank you very much. And now, I would like to give the words to our Mahamandaleshwar, Sri Gyaneshwar Puri Ji Maharaj. Gyaneshwar Puri, Gyanesh, Nami Gyan aur Ishwar. Do mil jaye to kya chahiye? और ज्ञान नहीं और ईश्वर मिल जाए तो भी वो डबके क्यों कूने थू है तो ईश्वर और ज्ञान दोनों का मिलन होता है तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया समझिए तो नाउ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एंड इन संस्कृत इन एंड इन क्रोएशियन चार लैंग्वेज एट वंस स्पीक्स वही मां मंडलेश्वर बन सकता है बेटा फोर लैंग्वेज हिंदी संस्कृत इंग्लिश

एग्जाम आएगा अप्रैल में, अभी क्या स्टडी करना है? तो आप ऐसे कीजिए, 365 दिन है, आप आज 6 महीना के लिए खा लेना। एक दिन में 4 रोटी आप लेते, ठीक है, सुबह 2 शाम को 2, ठीक है, मांगे चलो 5 रहते, 6 लेते, तो 6 महीना में कितना दिन होगा? 180 दिन। 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना? 900 रोटी। तो ठीक है, आज सुबह हम बना देंगे भंडारा, 900 रोटी सबको खानी है, फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से, संभव है? इतनी मामूली चीज है, अब क्या है, 900 रोटी खा लीजिए, क्या है, कोई खास नहीं है। 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी, ऐसे नहीं चलता है ना। तो अगर ऐसे नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते, पूरी 6 महीने की पढ़ाई कर सकते एक रात में, वो एक रात भी नहीं, 2 घंटे में। अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे, संभव है या नहीं है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो पढ़ना होता है रोज, डेली। तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं, हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते हैं, ओपन स्टडी करते हैं, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मांग के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा? 180 तो हो गया, नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते, 1 घंटा, कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी, आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा? असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना, क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा, और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते हैं? कम से कम कोई तो मार्क्स आए, अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और क्या माता पिता खुश नहीं होंगे? अरे मेरा बेटा 95% आ गया, अभी है कोई यहाँ 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से 1-2-3 दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा,

Good. Thank you. Thank you, ne main huniyo. Thank you. And you see the all vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now, only the हमारे गुरुकुल के बच्चे जो है turn to the camera side. मुंह देखो दूसरे लोग नहीं. Only the vidyarthi turn to the don't go close to the chela नहीं दिखेगा बेटा. तू इधर आ खड़ा हो जा. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस. ओके वी विल सी इफ व्हेन इज देवेश्वर महादेव की जय. अलकपुरी जी महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी महाद्वारानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की ओम शांति शांति शांति. ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिव उर्वारुकम् एव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीर्माम् मृत्यु.

निर्मा ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो, इस कैमरा में देखो, दिख रहे हो तुम लोग? तुम दिख रहे हो? पीछे खड़े हो, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद। दिख रहे हैं सभी के? नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊँगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।